0: नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर
1: 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के सभी लिसनर्स का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है नॉन स्टॉप गपशप। 10:03 और मैं रहूंगी आपके साथ पूरे 11 बजे तक। और चलिए सबसे पहले सुनते हैं के डोमिनिक की आवाज में ये गीत।

0: इस गीत को लिखा महबूब ने, संगीत बद के इस्माइल दरबार ने, और ये गीत है फिल्म हम दिल दे चुके सनम से।
1: आज के दिन
0: आज है द कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस, जो हर साल 4 मई को मनाया जाता है। ये दुनिया भर के कोयला खनिकों की कड़ी मेहनत और बलिदान का सम्मान करता है। ये दिन हमें घरों, उद्योगों और समुदायों के लिए ऊर्जा प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है।
1: आज के दिन
0: दस बजकर 11 मिनट और 11 सेकंड आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और दोस्तों, कोयला खनिक दिवस आज मनाया जा रहा है, द कोल माइनर्स डे। आज की कहानी काले रंग की है, लेकिन इसमें छुपी है सुनहरी चमक। ये कहानी है उन लोगों की जो धरती के नीचे उतरकर हमारे ऊपर की दुनिया को रोशन करते हैं। एक और गीत आपके सामने अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, फिल्म ऊंचाई का, सुनिए ये गीत।

ऊंचाई फिल्म के इस गीत को इरशाद कामिल ने लिखा और अमित त्रिवेदी ने संगीतबद्ध किया। और चलिए क्विक सा वेदर चेक कर ले और फिर बात करेंगे, गपशप करेंगे। स्थानीय मौसम विभाग ने जो हमें सूचना दी है उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान था 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान था 26 डिग्री सेल्सियस। नमी और आर्द्रता की यदि बात करें तो अधिकतम नमी 98% और न्यूनतम नमी 64% आकी गई। स्थानीय मौसम विभाग ने जो हमें आने वाले 24 घंटों में उन्होंने जो सूचना दी है उसके अनुसार अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और इस दौरान लगभग आकाश में बादल छाए रहेंगे और आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है और इसी के साथ साथ झोंकीला हवा भी चल सकता है। चलिए

और उसमें छुपी है एक सुनहरी सी चमक। उन लोगों की कहानी है ये जो धरती के नीचे उतरकर हमारे ऊपर की दुनिया को रोशन करते हैं। दोस्तों, कोयला जिसे हम काला सोना कहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस काले सोने को बाहर लाने वाले लोग कौन है? वो लोग हैं जो सुबह की पहली रोशनी से पहले, जब शहर अभी सो रहा होता है, वो लोग तैयार हो रहे होते हैं हेलमेट, लैंप और हिम्मत के साथ। ये है हमारे कोल माइनर्स, हमारे कोयला खनिक, जो धरती के सैकड़ों मीटर नीचे, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है ना खुली हवा, वहां ये लोग काम करते हैं। अंधेरे में धूल के नीचे, धूल के बीच मशीनों की आवाज के साथ। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में उजाला चाहते हैं, ताकि हमारे घरों में उजाला बना रहे। 10:25 और आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और अब एक गीत आपके सामने पेश करूंगी शान की आवाज में।

0: Culture.
1: दस मई को कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में चिरो नूतन होगा शाम को। ये एक म्यूजिकल शो है और जिसमें इंडिया पेस ट्रिब्यूट टू रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र संगीत इन अ थाउजेंड वॉइसेस।
0: Culture.

दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि जब हम स्विच ऑन करते हैं और लाइट जलती है तो उसके पीछे क्या सिर्फ बिजली होती है? जी नहीं, उसके पीछे सिर्फ बिजली नहीं होती, बल्कि किसी खनिक की, किसी कोल माइनर की मेहनत भी होती है। अब जरा सीन बदलते हैं। ऊपर शहर में गाड़ियां दौड़ रही है, फैक्ट्रियां चल रही है और हर जगह एनर्जी है, पर ये एनर्जी आती कहां से है? बहुत हद तक कोयले से। लेकिन कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, क्योंकि हर दिन हर शिफ्ट में ये लोग जोखिम उठाते हैं।

फिर भी मुस्कुराते हुए वापस आते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। और कितने कठिन परिस्थितियों में वो रहते हैं हम और आप सोच भी नहीं सकते। और ये मैं इस दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने एक कोल माइन कभी विजिट किया हुआ है, और पूरा अंधेरा, धूल मिट्टी, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, और चारों तरफ मशीन और हवा, खुली हवा, तो आप इल्म भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और उन मुश्किल हालात में हमारे कोल माइनर्स काम करते हैं, कोयला निकालते हैं, और उस कोयले से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे हम अपनी जिंदगियों को खुशहाल बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे और यूफोरिया एल्बम से पलाश सेन की आवाज में सुनेंगे इस अगले गीत को।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक चुटकी नुस्खे। और आज का नुस्खा है टाइम मैनेजमेंट पे। हम अक्सर अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को पूरा दिन दे देते हैं और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट या थर्ड इम्पॉर्टेंट काम है उसे इतना इग्नोर कर देते हैं कि हम अपने डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते। तो हर काम को उसकी अहमियत के हिसाब से प्राथमिकता तो दे, पर हर काम को कुछ समय पूरे दिन में ज़रूर दे। इससे आपका हर काम आगे बढ़ेगा और आप किसी भी काम में पीछे नहीं रहेंगे।
2: एक चुटकी नुस्खे।
1: दोस्तों, कोयला लाखों साल पुराना होता है, मतलब जो ईंधन आज हमारी गाड़ी या बिजली बना रहा है वो तब बना था जब ना इंसान थे ना शहर। आज की दुनिया बदल रही है और आज नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी काफी हम अपने चारों ओर देख सकते हैं, लेकिन अभी भी कोयला हमारी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा है और जब तक ये है तब तक हमारे कोल माइनर्स की मेहनत हमारे साथ है। और अब चलिए एक गीत आपके सामने पेश करती हूँ और ये गीत है फिल्म लक्ष्य से, और इसे गाया है शंकर महादेवन, सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, रूप कुमार राठौड़, हरिहरन और विजय प्रकाश ने।

जावेद अख्तर के अल्फाज के साथ शंकर एहसान लॉय का संगीत। और दोस्तों, आज कोल माइनर्स डे पर थोड़ा रुक कर ये सोचना जरूरी है कि रोशनी सिर्फ बल्ब से नहीं आती, कभी कभी वो अंधेरे में काम करने वालों से भी आती है, जो जमीन के नीचे खुद अंधेरे में रहकर हमें रोशनी प्रदान करते हैं, हमारी दुनिया को चमकदार बनाते हैं। और आज की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई स्विच ऑन रह जाएगा हमसे, तब हमें याद रखना है कि उस खनिक की, उस माइनर की मेहनत हम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए यदि ज़रूरत ना हो तो अपने पंखों को, अपने स्विचेस को, अपने बल्ब्स को बंद रखें। और इसी के साथ वक्त को फिर कुछ वक्त देने का वक्त आ गया है, आपकी आरजे पलक के पलक झपकाने का समय आ गया है। मुझे दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। 10:54 और 54 सेकंड एंजेलिक नंबर, मेक अ विश। और इसी के साथ करसन सर सागथिया की आवाज में डोर फिल्म का सुनिए ये अगला गीत। मीर अली हुसैन ने इसे लिखा और सलीम सुलेमान ने इसे संगीतबद्ध किया।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार और सभी का स्वागत है दोस्तों 107 एफएम रेनबो पर आरजे अंकित आपके साथ। और वक्त हो चुका है 3:05 PM यानी शाम के या दोपहर के, आप जो भी कहिए, शाम 3:05 हो चुके हैं और आपका दोस्त अंकित है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है तीन का तड़का। जी हाँ, तीन का तड़का इसलिए भी क्योंकि दोस्तों कि 3 बजे के आसपास हम आते हैं और लगाते हैं गानों के साथ इस कार्यक्रम में तड़का। जी हाँ, रहने वाला हूँ 4 बजे तक आपके साथ। लेकर आया कुछ धमाकेदार ट्रैक्स, कुछ सुपर हिट ट्रैक्स और कुछ सोलफुल ट्रैक्स आप लोगों के लिए। तो इन ट्रैक्स के पिटारों के साथ, इन गानों के पिटारों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ। और पहला ट्रैक अरिजीत सिंह की मधुर आवाज में उनका साथ दे रही है मोहन कान। चलिए सुन लेते हैं ट्रैक।

फिल्म जग्गा जासूस से दोस्तों अरिजीत सिंह और मोहन कानन की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक। प्रीतम कमिश्नर नीलेश मिश्रा के थे बोल। और दोस्तों 551 यानी 551 शहरों में आयोजित हुई नीट यूसी परीक्षा। कोलकाता सहित देश भर में 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों के रविवार को

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 परीक्षा आयोजित की गई। अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा की जैमिनी तैयारी का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA मुख्यालय का दौरा किया।

फिल्म तेवर से इमरान खान की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक इमरान खान का कंपोजिशन और लिरिसिस्ट भी इमरान खान ही थे दोस्तों। और वोटों की गिनती की मदद के लिए 432 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना है सही, वोटों की गिनती के लिए 432 ऑब्जर्वर किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि 24 उत्तर 24 परगना में ऑब्जर्वर की सबसे अधिक तैनाती है। यहाँ 33 चुनाव क्षेत्रों में 49 काउंटिंग ऑब्जर्वर है। सबसे कम ऑब्जर्वर अलीपुर द्वार में है। वहीं राज्य के 5 चुनाव क्षेत्रों में 6 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं।

दिलवाले से दोस्तों आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। ये ट्रैक प्रीतम चक्रवर्ती का कंपोजिशन और लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य और जिले में मुस्तैद की गई है 200 से अधिक सीआरपीएफ की कंपनियां। उत्तर 24 परगना जिले के 33 विधानसभा सीटों के वोटों की गणना कुल 8 वेन्यू में जहां पर सोमवार से आज मतगणना जारी है। इन जगहों की सुरक्षा के अलावा इलाके के कानून व्यवस्था और स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा के लिए इस दिन कुल 200 से अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात रहेंगी।

फिल्म रागिनी MS2 से क्षितिज तारे लेकर आए थे। ट्रैक प्राणे, रीजा का संगीत और लिरिसिस्ट थे कुमार। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताऊं कि दूसरी के छात्र ने अकेले किया 2000 किलोमीटर का सफर। महज दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक नन्ना छात्र अपनी हिम्मत से सबको चौंका दिया। अदृश नाम का यह बच्चा बेंगलुरु से अकेले फ्लाइट में बैठकर करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर कोलकाता पहुंचा। रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट जब वो उतरा तो वहां मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इतनी कम उम्र में अकेले लंबी यात्रा करना किसी के लिए भी आश्चर्य की बात थी। अदृश के कोलकाता पहुंचने की खबर मिलते ही उसके रिश्तेदारों ने राहत की सांस ली। परिवार के लोगों ने बताया कि जब तक वह सुरक्षित नहीं पहुंचा था सभी चिंतित थे, लेकिन उसे सकुशल देखकर खुशी दोगुनी हो गई। पूरे सफर के बारे में पूछे जाने पर अदृश ने बताया कि उसे किसी तरह की भी परेशानी नहीं, वह छुट्टियां मनाने के लिए अपने मामा के घर आया है। परिवार ने भी माना कि छोटी उम्र में अदृश का यह साहस काबिल तारीफ है। हालांकि उसके सुरक्षित पहुंचने तक सभी की चिंता बनी हुई थी।

0: डेनी रियाज की आवाज़ में आप सुन रहे थे हसी तो फसी से ये ट्रैक, विशाल शेखर का कंपोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। और आई दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग खबर की तरफ बढ़ता हूँ। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया दुनिया का पहला ऑप्टो SIR सैटेलाइट। स्पेस एक्स ने रविवार को कैलिफोर्निया से फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप गैलेक्साई के मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण किया। कंपनी के अनुसार मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऑप्टो SIR उपग्रह है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO और सिंथेटिक उपचर रडार SIR सेंसर का एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। EO सेंसर धूप और साफ मौसम में हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लेते हैं, जबकि SR सेंसर रडार प्लस के जरिए हर मौसम और हर समय तस्वीरें उपलब्ध कराते हैं। कंपनी के संस्थापक और CEO सुयश सिंह ने कहा कि मिशन दृष्टि के सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने के बाद हमारा ध्यान इसकी कमिशनिंग को पूरा करने पर है। और दोस्तों, अगले ट्रैक की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वक्त हो चुका है 3:28 PM। RJ अंकित आपके साथ शो चल रहा है 3 का तड़का, और सुना रहा हूँ बैक टू बैक कुछ धमाकेदार ट्रैक आप लोगों के लिए। रहूंगा मैं 4 बजे तक आपके साथ, और आपका दोस्त है इस कार्यक्रम में RJ अंकित।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का। Baru 7 FM, Rainbow Bud.

मैरी कॉम से दोस्तों अरिजीत सिंह की एक बहुत ही प्यारी सी आवाज में एक प्यारा सा गीत था। शिवम का था, संगीत संदीप सिंह के थे बोल। और मीरा एंड्रीवा को हराकर मार्टा कोस्त्युक ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता। यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक ने रूस की मीरा एंड्रीवा को सीधे सेटों से हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। कोस्त्युक ने फाइनल में पहले सेट में संघर्ष करने के बाद एंड्रीवा को 7-5, 6-3 से हराया।

यंगिस्तान से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे ये ट्रैक जीत गांगुली का कंपोजिशन कौशर मुनीर के थे बोल। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये एक बांग्ला गाने का रीमेक है। आइए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ।

फिल्म द एक्सपोज से दोस्तों हिमेश रेशमिया, यो हनी सिंह और पलक मुछल लेकर आए थे ट्रैक। कंपोजिशन हिमेश रेशमिया की और लिरिक्स से शब्बीर अहमद। और दोस्तों बात हो रही है यो हनी सिंह की रैप की, तो थोड़ा सा रैप क्यों सुने, आइए सुनते हैं पूरा रैप इस अगले गाने में।

जिसको नाचना है ना चाहो, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये ये ये करके दिखाओ, ये फिर ये अब ये ये।

0: सॉन्ग एंड कंपोज्ड बाय यो हनी सिंह, फिल्म भूतनाथ रिटर्न से आप सुन रहे हैं दोस्तों एक ट्रैक, और लिरिसिस्ट भी थे यो हनी सिंह। 3:51 PM हो चुका है आरजे अंकित आपके साथ, और शो चल रहा है तीन का तड़का आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। आरजे अंकित आपके साथ रहने वाला हूँ, 4 बजे तक सुना रहा हूँ बैक टू बैक धमाकेदार ट्रैक्स, और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

हैप्पी एंडिंग से दिव्या कुमार शेफाली एल्वर्स लेकर आए थे ट्रैक, सचिन जी का कंपोजिशन आशीष पंडित के थे। बोला ही दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी ट्रैक की तरफ और हो रही है डांस की गाने, डांस की बातें। चलिए बढ़ते हैं लास्ट ट्रैक, एक डांस वाला ट्रैक ही।

गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे अंकित और आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं छायालोक, और आज छायालोक में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सुरों की महफिल पर। दोस्तों, आज की ये शाम होगी नए दौर के खूबसूरत बॉलीवुड गीतों के नाम, जहां हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे बल्कि जानेंगे उन म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट्स के बारे में जिनकी मेहनत और क्रिएटिविटी इन गीतों को बनाती है यादगार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की म्यूजिकल जर्नी।

प्रीतम की मेलोडी और अमिताभ भट्टाचार्य की पोएटिक लिरिक्स ने इस गाने को मॉडर्न रोमांटिक एंथम बना दिया। और दोस्तों, आप तो आवाज़ से पकड़ ही लिए होंगे कि ये थी अरिजीत सिंह की मधुर आवाज़।

अनिरुद्ध रविचंद्र आज की जेनरेशन के सबसे एनर्जेटिक कंपोजर्स में से एक माने जाते हैं। छलिया में रोमांस के साथ मॉडर्न बीट्स का शानदार फ्यूजन सुनने को मिलता है। कुमार के आसान और कैची लिरिक्स ने इस गाने को इंस्टेंटली पॉपुलर बना दिया।

फिल्म टू स्टेट से दोस्तों सुन रहे थे बेनी दयाल की आवाज में ट्रैक शंकर ऐसा लॉय का कम्बोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। दोस्तों कुछ गाने शोर नहीं करते, बस दिल में धीरे धीरे उतर जाते हैं।

फिल्म भेड़िया से दोस्तों सचिन जिगर की जोड़ी आज बॉलीवुड में मेलोडी और फ्रेशनेस के लिए जानी जाती है। अपना बनाले में रोमांटिक फील के साथ सूदिंग म्यूजिक अरेंजमेंट सुनाई देता है। अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स इस गाने को दिल के बहुत करीब ले आते हैं।

जहां तक लंबिया सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, एक फीलिंग बन गया है। इसकी सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। सॉफ्ट पंजाबी टच और सोलफुल कंपोजिशन ने इस टाइमलेस रोमांटिक ट्रैक बना दिया है।

ओल्ड स्कूल बॉलीवुड रोमांस की खूबसूरती अगर किसी नए गाने में महसूस करनी हो तो वे कमलिया जरूर सुनिए। प्रीतम ने इस गाने में क्लासिक मेलोडी का जादू बिखेरा है।

इरशाद कामिल के लिरिक्स हमेशा दिल की गहराइयों से निकलते हुए महसूस होते हैं। ओ माही में लॉन्गिंग, लव और सेपरेशन की इमोशंस बहुत खूबसूरती से सामने आती है।

0: विशाल मिश्रा आज के दौर में सोलफुल म्यूजिक का बड़ा नाम बन चुके हैं। पहले भी मैं उनकी कंपोजिशन बेहद इमोशनल फील देती है।
1: मेरा बाबा।

फिल्म काइपो जैसे दोस्तों श्रुति पाठक और दिव्या कुमार लेकर आए थे। यह गीत अमित त्रिवेदी का संगीत स्वनंद किरे किरे के बोल। दोस्तों यही तो खूबसूरती है आज के बॉलीवुड म्यूजिक की। टेक्नोलॉजी बदल गई, साउंड बदल गया, लेकिन इमोशंस आज भी वही हैं। प्यार, यादें, दोस्ती और दिल की बातें सब कुछ इन गीतों में सुनाई देता है।

रहमान सर की कंपोजिशन सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर तुम साथ हो, हार्ट ब्रेक और इमोशंस का मास्टरपीस माना जाता है।

धूम थ्री से दोस्तों सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में, ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन कौशार मुनीर के थे बोल। इस गाने की सिंप्लिसिटी और रोमांटिक वाइब लिसनर्स को इंस्टेंटली कनेक्ट करती है, यही वजह है कि ये सॉन्ग लंबे समय तक चार्ट्स में बना रहा। दोस्तों बढ़ेंगे अगले गीत की तरफ और इसी गीत के बाद आपको दोस्तों लिए चलूंगा सीधे न्यूज रूम की तरफ, जहां से आप सुनेंगे न्यूज 5 मिनट के लिए, यानी 8:00 से 8:05 तक आप सुनेंगे न्यूज और फिर मैं लौटूंगा वापस 8:05 पर। जारी रहेगा छायालोक में सूरों की महफिल का सिलसिला जारी, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 107 FM रेनबो पर, आपका दोस्त आरजे अंकित आपके साथ।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

दोस्तों न्यूज़ के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 107 एफएम रेनबो पर। आपका दोस्त है आरजे अंकित। दोस्तों और शाम के 8:06 हो चुके हैं और मैं हूं हाजिर कार्यक्रम लेके छायालोक। और आज छायालोक में दोस्तों हम कर रहे हैं कार्यक्रम आपका अपना सुरों की महफिल। जी हाँ, आज की इस खास महफिल में हम बात कर रहे हैं नए दौर के बॉलीवुड म्यूजिक की, उन कंपोजर्स की जिन्होंने मॉडर्न साउंड को मेलोडी से जोड़ा, और उन लिरिसिस्ट की जिन्होंने सिंपल शब्दों में गहरी फीलिंग्स लिखी।

सजनी सुनते ही दिल में एक इमोशनल साइलेंस सा महसूस होता है। राम संपत की सोलफुल कंपोजिशन और अरिजीत की आवाज इस गीत को बेहद खास बनाती है।

पार्टी मूड हो, ऑन एनर्जेटिक वाइब हो, कैची हुक लाइन हो, तो गाना इंस्टेंटली हिट हो जाता है। तौबा तौबा इसी एनर्जी का नाम है।

फिल्म लुटेरा से दोस्तों सुन रहे थे मोहाली ठाकुर की आवाज में। ये ट्रैक अमित त्रिवेदी का कंपोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। 8:21 PM हो चुका है दोस्तों। आरजे अंकिता आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है छायालोक आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। छायालोक में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सुरों की महफिल के बारे में, और इस सुरों की महफिल में दोस्तों मैं बात करूँ कुछ शानदार कंपोजिशर्स और लिरिसिस्ट की जिन्होंने मॉडर्न बॉलीवुड म्यूजिक में एक नई पहचान दी है।

फिल्म ये जवानी है दीवानी से दोस्तों आप सुन रहे थे बेनी दयाल और शेफ अली एल्वरेस की आवाज में। ये गीत प्रीतम का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के थे बोल। और दोस्तों एक जरूरी सूचना, अगले 2 घंटे के दौरान बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, उत्तर दिनाजपुर, मालदा और पुरुलिया जिलों के कुछ हिस्सों में भीषण आंधी, तेज बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की बहुत संभावनाएं हैं। और दोस्तों संभावनाओं से तो ये भी लग रहा है कि दोस्तों अब हमारे जो इस कार्यक्रम में संभावना है कि बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आने वाला है आप लोगों के लिए।

रोचक कोहली की कंपोजिशंस हमेशा यूथ को कनेक्ट लेकर आती है। सोनी सोनी में फ्रेशनेस, रोमांस और कैची मेलोडी का परफेक्ट ब्लेंड सुनाई देता है।

0: कुछ गाने पार्टी वाइब के साथ सॉफ्ट इमोशंस भी लेकर आते हैं और नैना उन्हीं ट्रैक में से एक है।
1: বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকার

आर्टिकल 370 से दोस्तों जुबिन नौटियाल शाश्वत सचदेव लेकर आए थे ट्रैक कंपोजिशन शाश्वत सचदेव की लिरिसिस्ट कुमार। इस गीत में इमोशंस बहुत ब्यूटीफुली कंपोज किए गए हैं, सॉफ्ट ऑर्केस्ट्रेशन इसे और सोलफुल बना देती है।

मिस्टर एंड मिसेस माई से मोहम्मद फैज लेकर आए थे ट्रैक। संगीत भी जाने का, बोल भी जाने के दोस्तों। 90s नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न अरेंजमेंट दोनों की खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस गीत में सुनाई देता है। दोस्तों आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेलोडी दोनों के साथ लेकर चल रहे हैं और शायद यही वजह है कि नए गाने भी लोगों की यादों का हिस्सा बन रहे हैं।

कबीर सिंह का दोस्तों ये गाना सिंपल ट्यून और हार्टफेल लिरिक्स, यही वजह है कि ये सॉन्ग आज भी लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में शामिल है।

आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं ना, उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।

जब बीट पावरफुल हो, लिरिक्स कैची हो दोस्तों, तो एनर्जी फुल ऑन, तो सॉन्ग सेलिब्रेशन बन जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा फिल्म 2:32 से परंपरा टंडन की आवाज में, और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त आरजे अंकित लेकर इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से कुछ दिनों बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सुनते रहिए साथ रहिए 107 FM रेनबो।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।